चात्रक जल, ज्यो चात्रक जल बिन बिल लावै, बिन जल प्यास न जाय। गुरमुख जल पावै सुख सहजे, हरिया पाए सुपहाई।

रहाऊ। जिन हर ते आया सब किश तिसका, तिसकी भूख गवाई। ऐसा धन दिया सुखदाता, निखोट न कभी जाई।

थापै साथ संगत बुद्ध पाई साकत का बकना इउं जानौ साकत का बकना इउं जानौ जैसे पवन चुलाई कोट पराध अशा दियो इहु मन।

जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ। जिहि जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ शरणे जिहि नर विसरिया।

गुर पूरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवां। भूखे खावत लाज न आवे त्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाई है जित सिमरन दरगाह मुख।

माया लालच अटिया प्यारे चेतना आवह मूल जिन तू विसरह पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल

सब पवित्र है, जो नाम हर राते तिनक घर मंदिर महल सराई सब पवित्र है। जिन्नी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाते।

तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याएंदे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों।

भया भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण भय भागी।

मनमुख भूले अंध गावार, भिख्या कै तन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा धन गुरमती पाए, काचा धन हुन आवै जाए रहाओ, मनमुख भूले।

संत जपहो हर जपना हर संत चलाए हर नाले जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन।

जुग महें धर्मा जन कौ नाम बडाई सोभ नामो पत जन की माने जो जो होग रहाऊ।

हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरा ना काहूं बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा दिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत

परमेश्वर है, आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

जोड़ी। हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई। सलोक

अकिरत घणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक। कोट दान इशनानं अनेक सोधन पवित्रता है उचरंत नानक।

रहाओ। ऊज समाना ठाकुर तेरो अवर्ण काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, रात रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

खेल सब हरतनी, सालाह हो सच सब ऊपर हरतनी। सब आए हुक्म खसमा हो, हुक्म सब वर्तनी। सच साहेब साचा खेल सब हरतनी, सालाह हो सच सब ऊपर हरतनी।

केसा का कर बीजना संत चौर टुलावो केसा का कर बीजना संत चौर टुलावो शीश

मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वड

साज शब्द लिवलाई आन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर न जाने दूजा सब महे रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रवया सोई गुरमत

तह जन्म न मरना, तह जन्म न मरना आवन जाना, बहुण न पाईए जुनिए, नानक गुर परमेश्वर पाया, जिस प्रसाद इच पुनिए।

जपाओ अपने हर भाली सद बैरागनी हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख हर नाली अकाश कथा कहिए गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करणी क्या कार कमाए हों मैं मेट चले गुर शब्द समाए।

ले जो हर पावै भगवानां। कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे काम। इकना कर्म है दे वड्याई, एक परम भव है अभिमाना।

कै मन अभिमान कहत सुनत सभे सुख पावह मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

बलिहारै बिलावल महला पंजवां बिखै बन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली।

निस्बा सरमन अनद होत चितवत किरपाल रहाव। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लाग हो पाल, मोको दी जयदान प्रभ संतन पगराल उकत सियान।

त्याग संत संग समावो सास सास नह विसरै अनकत है ना तावो सफल दर्शन गुर पेटिया मान मोह मिटावो सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो।

अवर काश सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवां।

पांड हर संग सहाई महामीत तिस सिउ तेरा भेद विधा पंच बटवारई उपजियो महाखेद नानक तिन

समरथ है तिस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा सिमर।

दृष्ट दृष्टाय अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल।

पूर्ण पूर रहो संपूर्ण शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तनते होए सगल खई।

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश कुशैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम।

रख रख चरण हर ताल पुरैया हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर धार चुवै अत निर्मल जिन पिया तिन ही सुख लहिया मन हठ कर्म करै।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग मनुआ गीध नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जत कत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सदगुर जोग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी।

पसारी सोग हरख मह दे बिरधानी साखत एवही करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे इहो निधाना सारू पाहे नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन्ही डीठा राम कली महला पंजवां पंच शब्द।

फलत फलत होहे दोहें सुहेले। अचर्ज पुरख त्याओ रहाव, उठत बैठत हर जाप, बिनसै सगल संताप। बैरी सब होवह मीत, निर्मल तेरा होवै चीत। सब ते उत्तम इहो करम, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म। हर

कमल हर शरण मन तन हर ओही ध्याया आनंद हर रूप दिखाया तिस ही की ओट सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर

निंदा कर कर बहुत विगूता गर्भ जोन मह किरत पया पूर्व कमाणे छोडह नाही जम दूत ग्रास्यो महा भया बोलै झूठ कुमावै अवरा तृष्ण न बूझै बहुत हया असाध रोग उपजया संत दूखन दे बिनासी महा खया।

पहला अंतर उत्पुज अवरना कोई जो कहिए सो प्रवत होई जुग है जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत परलो।

बिन नरक गया, खिनमह वेश करह नटुआ ज्यों, मोह पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया, करह बिकार विथार कन्हेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया। हौ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वह रोग गया। सुख संपत कौ आवत देखें, साकत मानं अभिमान पया।

गुरमुख के ती शब्द उधारी संत हो रहाओ। ममता मार हों मैं सुख है त्रिभवन जोत तुम्हारी, मनसा मार मने मह राखै सतगुर शब्द भी।

जे कुटंब छोड़ पर पवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है।

इहो शरीर सर्वर है संत हो, इशनान करे लिवलाई, नाम इशनान करहे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई, त्रै गुण अचेत नाम चेत है नाही, बिन नाम है बिन सजाई, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूरत, त्रै गुण परम फुलाई।

हर भाणा गुर पहाया, मेरा हर प्रभ करे शाबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ भाणा पहावै। जिस हर प्रभ भाणा पहावै, आनंद अनहद वजह है।

हाँ, नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याएणा।

तुझै पछान नहीं, मोहे निर्गुण अनाथ शरणी आया। बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया, गुर नाम दिया कुशल थी।

संत प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोए जियो सदा सदा हर सिमरिया जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै गुर चरण लागे दिन सभागे सर्व

कस कसवटी सह सोताओ नदर सराफ वनी चढ़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करतै करणी कर पाई जिनकी

सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा

पौड़ी जो तद पहाणा जंत सो तद बुझ जो तद पहाणा जंत सो दरगाह सिझ जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई।

लागी सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संजम रव सस गहने देउ रे। सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पेउ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल

हर हर हर उर तारयो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता। सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

चौथा सब सिद्ध साधक मुन जना मन भावनी हर त्यायो अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हर अलख

सब किल बिख हर जस जाला, मन आनंद भया गुर पाया, जन नानक शब्द निहाला, बहु मैले निर्मल होया, सब किल बिख हर

हर शरण आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार कडले हो पौजल बिखम ते जन नानक सद बलिहार।

सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा श्याम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुर बिन मुख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई। गुरमत ले हो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पहे सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाई, नानक गुर परम चुकाया। गुरमत

क्या निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग

भगवत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावे गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन जप

यो भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मारे गगन अंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाई है शब्द

फदवा जय गुर शब्द निरंजन पाया निर्भउ सो सिर नाहीं लेखा आप अलेख कुदरत है देखा आप

मन हाथी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ। गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया। गुर शब्द ही सब

है, मर मर जम है, शब्द ना विचार है, अंतर माया मोह गुबारा, ज्यों सुपने सुध ना होई है। एक पंचावार शब्द है लागे, सतगुर आए मिलिया बट भागे, अंतर साच रवह रंग राते, सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे, पूरा सेवक शब्द सियापे, सच्चा शब्द रवै कट अंतर, रसना रस चाखै सच सोई है। सदा शब्द रवै कट अंतर, रसना रस चाख।

गुरमुख होवै सो सच कमावै साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई हो मैं तृष्णा शब्द बुझाई